0: लाइफ क्रिटिकल ते डिसेबिलिटी इंश्योरेंस दा होना बहुत जरूरी है। सो कॉल गुरजीत सूरी जिन्हां कोल प्लान्स हन विद स्टार्ट फ्रॉम ओनली $99।
1: स्टूडेंट्स लाइक खास $250,000 लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्लान सिर्फ $19 तो। फॉर सुपर वीजा विजिटर इंश्योरेंस DFSA RRSP NRESP कॉल गुरजीत सूरी एट 416-627-3111। खुशियां दे संग
2: सुन रहे हो रेडियो प्रोग्राम जिंदगी दे रंग अपनी होस्ट गुरजीत कौर सूरी दे नाल। अपने बिजनेस नु प्रमोट करन लई कॉल करो 416-627-3111 416-627-3111।
3: कहिंदे कि जिंदगी इक्को ही जिंदगी मिली है। जिंदगी दे विच इदां दे कदी वारी दौर आउंदे आ वी जदों असीं मेहनत करदे आ बहुत सारियां कोशिशां करन दे भी जिहड़े हैगे आ कि ठोस नतीजे नहीं सामने आते। इस दे बावजूद असी कुछ ना कुछ जड़ा करन च लगे हाँ। जे कहिंदे भी कोई भी चीज़ जिहड़ी हैगी है कि मिथे समय ते ना होवे, असी किसी मुकाम ते ना पहुँचीए, असी एक नहीं होर तरीके अपनाते हाँ, ये हैगे कि जिंदगी दे विच कोई ना कोई जड़े बदलाव करते हैं जिस विच सुधार की उम्मीद तो कुछ असी नवा भी सीखते हाँ, उस विच कुछ नवापन लैके आउण दी कोशिश करते हाँ, पर रुकते नहीं, सदा जतनशील रहिंदे हाँ। ये सब असी इस आस विच करते हाँ भी कदे तां साडियां उम्मीदां ते कोशिशां नूं बूर पवेगा। वह पैंदा भी जरूर है, समा भी लगदा, जिमें अंब दे बूटे नूं फलता अपनी रुत दे अनुसार समय दे लगना, पर बूटा सारा साल अपने जतन च लगा रहिंदा। अच्छा हुण बूटियां दी गल आई है, भी बहुत सारे हैगे जिन्हां ने गार्डनिंग दा शौक हैगा, ते अपने दे भी इत्थे गार्डनिंग जिहड़ी हैगी है कि आही 3 महीने हुंदे आ, जून जुलाई अगस्त सितंबर तो ते फिर ठंड शुरू होनी हो जांदी है ना। भई तुसी गार्डनिंग शुरू करती, क्योंकि आ वीकेंड ते गार्डनिंग वाला नहीं सी, पिछला जरूर सी, या हुण अगला वीक जिहड़ा हैगा बहुत गर्मी दसी जा रही है, फिर तुसी जिहड़ा हैगा भी गार्डनिंग कर सकते हैं ना। कहिंदे कि हुण जिंदगी जिहड़ी हैगी आ इही हैगी है भी अक के हार ना मन्नण दी कला आ, इक्को ही जिद है, यही जिद है भी अक्सर जिहड़ी साडी जित दा आधार बनदी है। साडियां कोशिशां सिर्फ साडी सफलता नूं नहीं दर्शाउंदियां, साडी सफलता दे पिछे वह जिहड़ी मेहनत हैगी है वह भी नज़र आउंदी हैगी है। कहिंदे कि इस दा अंदाजा साडे सुभाअ तों लगाया जा सकदा भी असी अक्कणा, रुकणा, हंबणा, हार के बह जाणा जां मुड़ उठ के अपनी धुन विच लग जाणा, खास करके साडे पंजाबी जिहड़े आ भी इसे लई जाणे जांदे आ भी इह ढेंदी कला च नहीं चढ़दी कला च रहिंदे आ, अपने अंदर दी मजबूती जड़ी हैगी है भी उदे तो बने रहिंदे आ, आप ही नहीं अपने आले दुआले वालियां नूं भी हिम्मत हौसले जड़े हैगे आ वह दिंदे आ। कहिंदे कि आम इंसानी फितरत है कि हर कीते सिरड़ दे नतीजे दी आस रखना, पर इशक जड़े हैगे आ नतीजे ना मिलन ते फिर ढा ढेरी जड़ी आ भी बह जाना जां मुड़ मेहनत करन लग जाण दा गुणी सानू आम तो खास बनाउंदा आ। अक्सर बहुत सारिया कोशिशों का मुल सिर्फ नतीजिया नाल असी जोड़ के देखते हाँ, पर कई बारी जिंदगी दे विच अजही मोड़ आउंदे आ भी जदों सानू साडी मेहनत का मुल नहीं मिलता, असी महसूस करन लगते हाँ भी साडी ते सारी मेहनत व्यर्थ हो गई, पर असल विच ये समां जिहड़ा हैगा बहुत बलवान हैगा। हुण कहिंदे कि असल दे विच समय तो पहला कहिंदे भी सानू जिहड़ा हैगा कुछ मिलदा नहीं हैगा, मेहनत जिहड़ी हैगी आ करदे रहना चाहीदा। कहिंदे कि जिवें इक किसान फसल दा बीज बेच के तुरंत नतीजियां दी आस नहीं करदा, सगों जिहड़ी उहदी तय कीती होई जिहड़ी हैगी आ मियाद उह पूरी होण ते फिर फसल दी जिहड़ी हैगी आ उम्मीद करदा। साडा हौसला ते आस उस किसान वर्गी होणी चाहीदी है। इतिहास भी इस गल की गवाही भरदा कि जिस भी मनुख ने हुण तक कोई महान सिरजना जां प्राप्ति की है उसने अपनियां कोशिशां विच निरंतरता नूं कायम रख्या, समाज विच इहो जिहे इंसान ही मिसाल बने हन। तुहाडी जिंदगी दे विच तुहाडे आले दुआले भी हैगे कोई इंसान ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 905-673-3337 ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਥੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰੜ, ਸਬਰ, ਹੌਂਸਲਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਖਾਰਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਗਰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਆ ਹਾਰ ਹੈ, ਬਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸੱਚ ਦਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮੁਕਾਮ ਵਧੀਆ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ।

हेलो नमस्ते सलाम आदाब ते सत श्री अकाल, की हाल चाल है मेरे फ्रेंड्स। डोगरी रेडियो सुनने सारे का मता मता स्वागत है। मैं तुहाडी आरजे डोगरी की धी आखदे नूं कि मेरा नाम है नेहा शर्मा। तो जो गल डोगरी की चलती है तो मैं सोचा डोगरी की गई गल करने हैं, तो डोगरी भाषा के बारे चुके मैं तुसें अज कुछ दसना है। कुत्थों आई है भाषा, कुत्थों निकली है भाषा, तो कुत्थे कुत्थे अजे बोली जाती है, तो इतने बोलने वाले लोग कुत्थे कुत्थे पुजे दे। डोगरी जी भाषा है बड़ी ही मिठी, आखते हैं खंडू वागर मिठी है भाषा है, तो खंडू के वागर मिठे इतने के लोग होंगे। ये जी भाषा है ये इंडो आर्यन ग्रुप की भाषा है। 22 दिसंबर 2003 इसे ऑफिशियल रिकग्निशन हुई ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल च इनकलूड हुई ही ऑफिशियली। तो ये जी ओरिजिनल लिपि है वह टाकरी लिपि, पर जिया के अज डोगरी गुआची दी है उआ के ये टाकरी लिपि भी गुआची दी है। तो सुनो आज एपिसोड का अगला गीत, तो फिर मैं तुसें सुनानी अगली गल।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आ डोगरे दी धी नेहा तुंदे सारे आस्ते लेई आई आं डोगरे रेडियो ते अस गल करा दे डोगरी लैंग्वेज दी, डोगरी भाषा दी। जियां कि मैं तुसें दसा दी ही कि टाकरी लिपि दा निकली ही, पर जियां कि अज जम्मू दे बिच भी बहुत लोग हन जो अपनी भाषा की नहीं बोलते, पर मैं मन्नी आ कि जेड़ी डोगरी भाषा है वो साड़ी माँ है, ते हिंदी है वो साड़ी दादी है, ते माऊ थार माँ होनी चाहिए है, ते दादी थारे दादी होनी चाहिए है। पर फिर भी कुछ लोग ने जो बड़े चिकते ने, शर्मांदे ने, ते कई ते वो भी कैटेगरी है लोगों की जो आखे दे अगर डोगरी बोल के तो ग्राई सही हो गए। ठीक है, मैं समझनी हर भाषा का ज्ञान होना बड़ा ही जरूरी है, एक पर्सनल डिवलपमेंट आस्ते हर भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, पर अपनी जड़ें ही भुलाना केड़ी समझदारी है। अपनी जड़ें दा अपनी पुरानी जड़ी अस जितों आए ने, जो साड़ी ओरिजिनल भाषा है वह भुलाना भी कोई समझदारी तो नहीं है, वह भी असी ज्ञान होना चाहिए उसका भी, तो असं अपने बच्चों की भी वह सिखानी चाहिए है। तो सुनो अगला गीत, तो मैं कहनी हाँ फिर अगली बार वो बाद।

मता मता स्वागत है तुंदा डोगरी रेडियो च। मैं हाँ अज दी आरजे तुंदी डोगरी रेडियो दी नेहा। तो मैं जियां तुसीं दस्या कि टाकरी लिपि दा निकली दी है, पर बड़े सारे लोग न जिन्हें कि टाकरी दा ज्ञान गे नहीं रहा है, विलुप्त होई है, जियां कि साड़ी भाषा विलुप्त होआ करदी है। तो अजकल सधारण तौर पर इसी देवनागरी लिपि च लिखिया जांदा है। तो ये जिहड़ी है इहदा सॉलिड बेस है इस भाषा दा, वो संस्कृत बेस्ड है। आई भी कई वर्ड हैं जो सिमिलर हैं संस्कृत दे ते डोगरी दे, या ते मीनिंग सेम हो जांदा हुंदा या फिर वह फोनैटिक थोड़ा जिहा चेंज हो जांदे ने। जियां कि संस्कृत दा वर्ड तुस लाओ यात्रा, जो कि डोगरी च आखा जांदा है यात्रा। अगर संस्कृत दा वर्ड तुस चुको हसा, तो ये डोगरी च हो जांदा है आसा। तो डोगरी भाषा सिर्फ डुग्गर प्रदेश च ही नहीं बोली जाती है, ये पंजाब के कुछ इलाके च भी बोली जाती है, जियां कि पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, उआं गे ही हिमाचल प्रदेश च भी बोली जाती है। डोगरी भाषा तो हिमाचली भाषा बहुत ही सिमिलर है, पर हिमाचल के आए भी कई जगह हैं जिदे च प्योर डोगरी बोली जाती है। तो डोगरी भाषा एक इकली भाषा नहीं है जी जम्मू प्रदेश बोली जाती है, ये कन्ने और भी बड़ी पहाड़ी भाषा जो बोली जाती है। तो सुनो अगला गीत, तो फिर मैं सुनानी हूँ तुम्हें बाकी भाषाएं के बारे में।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज गल करा दे डोगरी भाषा दी। ते जियां कि संस्कृत बेस होंदा है बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस दा, उआं गै डोगरी भी बेस है बहुत सारी और पहाड़ी भाषाएं दा। डुग्गर प्रदेश च और भी बड़ी सारी पहाड़ी भाषा बोली जांदियां ने डोगरी दे अलावा, जियां कि कांगड़ी, सिरमुरी, रामबनी, भद्रवाही, गोजरी, पोंगली, ये नहीं और बड़ी पहाड़ी भाषा जो इस प्रदेश च बोली जांदियां ने। ते मैं ये रिक्वेस्ट करनी है श्रोता गणे कि जो जो भी सुना दे ना, वो जेड़ी भी उंदी अपनी मातृ भाषा है, जो भी उंदी जड़ा ने, अपने आने वाली पीढ़ी की उंदे कोला अवगत कराना बहुत जरूरी है, ताकि जियां तुस नहीं भुले, अब तुंदी पीढ़ी भी अपनी जड़ें की नहीं भुले, ते उन्हें अपनी मातृ भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ते उम्मीद ही इजाजत, मैं फिर परती आगे जंदे आस्ते एक नवी कहानी लईए, एक नवा ज्ञान लईए मेरे डुग्गर प्रदेश का।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477 702 2023 647 702 B23 license number 10394।
1: मम्मी पापा दे वीजे री सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है, ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है, मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
2: शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
3: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
4: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले, याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
3: 416-917-7763 416-917-7763। Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

0: ਹੀਟ ਵੇਵ ਆ ਗਈ।
1: ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ?
0: ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
1: ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਐਨਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੀ।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, एता गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा होलसेल क्लब.ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।

0: रियल एस्टेट दी दुनिया विच आओ, अपने सुपने अनु सच कर वखाओ। फेयर डील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ।
1: रियल एस्टेट दियां बारीकियां सीखो ते कंपनी वालों क्लाइंट्स लीड्स भी पाओ।
0: फेयर डील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नवे एजेंट हायर कर रहे ने।
1: आज ही कॉल करो फेयर डील दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंदेर नु
0: 905-671-2000।
1: फेयर डील नाल हाथ मिलाओ, अपने सुपनिया नु सच कर विखाओ।
2: घर नु घर बनाउंदा है कंफर्टेबल फर्नीचर, ते जदो फर्नीचर दी गल आउंदी है ते फिर याद आउंदे ने कासा फर्नीचर वाले, जो है सब तो पुरानी ते भरोसेमंद फर्नीचर दी दुकान। जी हाँ, इत्थे तुहानू मिलदा है कस्टम सोफा, लेदर सोफा, सोफे, डबल बेड, मैट्रेस ते पूरे घर दा सारा फर्नीचर, ओ भी वाजिब रेटां ते। सो आज ही पहुंचो कासा फर्नीचर, 120 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड ब्रैम्पटन। इना दी एक और लोकेशन है सोफा मार्ट, 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन। ज्यादा जानकारी ले कॉल करो परंजीत होरानू 905-803-8056, 905-803-8056।
3: कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी यानी कि CRA बिना किसी कोर्ट जजमेंट तो तुम्हारे बैंक अकाउंट को सीज या फ्रीज कर सकते हैं। तुसी CRA दे कर्जे नो लीगली माफ करवा सकते हो। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल DCAF
4: 905-908-2499-905-908-9499 और विजिट 411debt.ca। सम कंडीशंस अप्लाई।
5: ऑटो ओनर्स, क्या आप ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं या फिर नया ड्राइवर ऐड करने के बाद आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ गया है? अगर आपके पास जी या जी टू लाइसेंस है और कनाडा में 3 सालों का इंश्योरेंस एक्सपीरियंस है तो टेंशन मत लीजिए।
6: ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया को आज ही कॉल करें, जो आपको अच्छा प्रीमियम, ऑनेस्ट एडवाइस और ग्रेट सर्विस भी देंगे। अपनी होम और ऑटो इंश्योरेंस का पैकेज बनवाएं और अप टू 30% तक बचाएं। ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया 6476562810, that is 6476562810।
7: ड्राइव कर रहे हो, शो नो एंजॉय कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो?
8: ड्राइविंग लाइसेंस?
7: नो।
8: पुलिस ऑफिसर?
7: नो नो।
8: ट्रैफिक लाइट्स?
7: नो।
8: देन
9: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज। मोस्ट ऑफ इंटरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले। आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज ना काम कर रहे पवन कौर गिल। 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकती है ऑटो, होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी। 647-325-9900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस।
10: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
9: की तुसी कनाडा विच स्टूडेंट वीजा दे उत्ते वर्क परमिट ते आए होए हो या तुसी कैनेडियन सिटीजन या PR होल्डर हो, अपने दोस्त रिश्तेदार ते मित्रां नूं अगर विजिटर या टूरिस्ट वीजा ते कनाडा बुलाना चाहुंदे हो तां परखिया ते भरोसे वाला नाम पंजाब विच सब तो वध सक्सेस रेट दे नाल ईजी वीजा, विजिटर वीजा कनाडा दा लगवा के दे रहे हन। वधेरे जानकारी लई ईजी वीजा 9592200200 9992200200 ते अज ही कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बनाओ।
11: सुनो जी, किथे हो? 11:30 हो गया रात दी, घरे नी आना अज?
12: मैं सेविंग कर रहा, नाले ग्रोसरी खरीद रहा, नजारा आ रहा है।
11: झूठ बोलन दी आदत नहीं की तुहाडी? रात नु 11:30 केड़ा ग्रोसरी स्टोर खुला होया?
12: फ्रेश ग्रोसरी डिपो रात दे 12 बजे तक खुलदे ने। जिन्ना दा कहंदे एक डोर तो बढ़ो दूजे तो निकलो, सेविंग 100 डॉलर दी। 905-458-1331 स्टेपल बुश स्टॉर रूम ते स्टेपल बुश दा इंटरसेक्शन, फ्रेश ग्रोसरी डिपो 905-458-1300।
11: छोटा मोटा कर्जा या करवानी है कोई भी घर विच रेनोवेशन, होम एक्विटी वीजा ले सकते हो। साधारण क्रेडिट कार्डा नालों कितने घट ब्याज, आसानी नाल उपलब्धता।
12: आज ही होम एक्विटी वीजा लेने दे लई कॉल करो 905-671-2000।
13: F-150 Ford ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। F-150 ਜਾਂ ਮਸਟੈਂਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਰੋਹਨ ਚੋਪੜਾ, ਚੋਪੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਚੋਪੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੇਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-302-4141.
14: ਹਾਂ ਵੀ ਰਣਵੀਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ?
15: ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੋਰਗੇਜ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਟੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ।
14: ਯਾਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਰਗੇਜ ਵਾਲੇ।
16: ਦੇਖ ਬਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਲੋਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਕਰਨਗੇ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ।
15: ਅੱਛਾ ਜੀ,
17: ਆਹੋ ਜੀ, ਨੀਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਐਂਡ ਲੋਨਸ? ਦੈਨ ਕਾਲ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ ਐਟ 905-671-2000. ਨੋ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਨੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ, ਲੋਨ ਅਪਰੂਵਲ ਵਿਦ ਇਨ 24 ਆਵਰਸ। ਨੰਬਰ ਰੱਖੋ ਯਾਦ, 905-671-2000, 905-671-2000, ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ।

0: Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 90545-12600.
1: सीजन आ चुके है पुराने अकाउंटेंट नाल खुश नहीं हो या टैक्स दे विच थोड़ियां बचत किथे होई हैं केड़े केड़े लिमिट्स तोड़ ले सरकार ने सेट किते हैं लोन मिल सकदे ने या किते भी थोड़ी कंपनी दी शेप किस तरह होनी चाहिदी है पंजाब टैक्स सॉल्यूशन दे जगजीत साचा जी मिसिसागा ते कैम्ब्रिज दीयां दो लोकेशंस तो नवीयां फाइल्स इत्थे लै रहे ने उत्थे तुहानूं सुचेत करदे हन आउण वाले समें लई टैक्स दीयां सर्विसिज लई पंजाब टैक्स सॉल्यूशन 416-720-3642 416-720-3642 पंजाब टैक्स सॉल्यूशन
2: कि तुसी भी इन्वेस्टमेंट दे इस दौर च प्रॉपर्टी च इन्वेस्ट करना चाहुंदे हो कि तुसी भी प्रॉफिटेबल आउटकम ले प्रॉपर्टी लब रहे हो वेयर फेयर डी रियल्टी रिप्रेजेंट्स आउटस्टैंडिंग फार्म हाउस 28 एकर लैंड विद टू रोड फ्रंटेजेस डबल कार गैराज ग्रीन हाउस एंड वर्कशॉप यही नहीं 407-418 हाईवे तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी ते फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कॉल द बेस्ट टीम फेयर डी रियल्टी ब्रोकर ऑफ रैकेट हरदीप पंदेर एंड 905-671-2000
3: My favorite, मेरी पहली पसंद.
4: I love it.
5: मैं तो सवेरे सुने बिना रह ही नहीं सकती.
3: हम सबकी पसंद.
6: Radio Awaaz.
3: Every morning from Monday to Friday, 9 to 10 and Saturday, 10 to 1 on AM 530. Non-stop calls, non-stop talks. Promote your business with us. Contact 416-518-3200.
7: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही
8: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं
9: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया
10: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता
11: रेडियो आवाज
12: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते वधेरे जानकारी ले तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200
1: ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਰਸ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਟੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋਗੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-816-8401 416-816-8401
13: रुपिंदर गरेवाल लॉ ऑफिस रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन विल बनाउन लई फैमिली लॉ जा फिर पावर ऑफ अटॉर्नी ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ कम्युनिटी दा जानिया पहचानिया नाम रुपिंदर गरेवाल बैरिस्टर सॉलिसिटर एंड नोटरी पब्लिक लोकेटेड एट चिंक्यूजी एंड बवेट फॉर ऑल सर्विसेज कॉल 905-497-1211 905-497-1211
14: दो व्याह कीते इंडिया च
15: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
16: ਹੈਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੈਂ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਮਨੋਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਗਰਮ ਗਰਮ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੇਸਟ ਢਾਬੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਘਰ ਵਰਗੀ
17: 50 Sunnyvale Gate, Brampton, Mountnesh and Bovedda intersection ya visit karo www.tavakitchen.ca 905-790-1699 tawakitchen.ca
18: याद है मेनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी किन्नी परेशान हो गई सी मैं इंश्योरेंस नाल डील करना गड्डी पेंट कराना किन्ने झंझट थैंक्स करदी हां मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालियां दा जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील कीता रेंटल कार भी दित्ती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दित्ता ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221
19: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaaz, The Voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200. Do vya

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macvin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900
1: आप पंजाबी आए
2: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
3: आप दे नाल शेयर करेंगे जी मोबिल गैस स्टेशन जरा के नियाग्रा फॉल च गावे 2020 बिल्ड होया सी डबल वॉल फाइबर ग्लास टैंक दे नाल ही गा जी एच स्टोर बहुत अच्छा है गावे एदे तीन पंप ही गने कैनोपी लगी हुई है फैबुलस लोकेशन ये प्राइम लोकेशन इन नियाग्रा फॉल सिटी और एहो जिहा मौका तुसी अपने हथों जान नहीं देना एदे वास्ते कॉल करनी होगी 6479884449 हसीब शेख 6479884449 सेवा का मौका जरूर देना जी

0: हरजीत जी, हर चैनल की रॉजर्स की अपनी डिफरेंट प्रमोशंस होती हैं। अगर आप वेबसाइट से लें वहाँ अलग होगी, कॉल करेंगे वहाँ अलग प्रमोशंस होती हैं, इस स्टोर पे जाए वहाँ अलग होती हैं। हमारे चैनल के पास सबसे बेस्ट ऑफर है, तो डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट प्रमोशंस हैं, तो आपको सबसे बेस्ट ऑफर दिला के देंगे। एक बार जरूर कॉल करके इन्फॉर्मेशन लीजिए।
1: बहुत अच्छी बात है। नंबर एक बार फिर से दे दें जी।
0: नंबर है जी जी 6478648000।
1: बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच जी सर, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम पंजाबी विरसा, नंबर एक बार मैं फिर दे देना वकार खान साहब का, और वकार खान जी का नंबर जो कि बहुत जरूरी है 6478648000 कॉल कर सकते हैं। 6478648000 पे आप वकार खान साहब के साथ बात भी कर सकते हैं। किसी नजर को भाई जान तेरा इंतजार है, बड़ा प्यारा गीत है ला। ये गीत बस जे ला दी है ना तो सारिया ने कैम हो जाना, सारे ने कहना भाई वाह हरजीत जी क्या गीत लगाया आपने। हेलो हेलो जी।
2: हेलो
1: जी सर, सत श्री अकाल वीरा जी, की हाल है?
2: वधिया वधिया भाई, तुसीं सुनाओ। मिस पूजा ला दे भाजी चिट्ठियां गाना, मिस पूजा ते गगनदीप दा।
1: मिस पूजा ते गगनदीप है?
2: हाँ जी।
1: अच्छा ये ला दी, ये पहला गीत क्योंकि मंडे ढिले जे होंगे यार थोड़ा जा ना सिस्टम। किसी
2: ने बड़ा घैंट गाना भाजी।
1: केड़ा वाला? रेनू जी और बहुत ज्यादा उन्होंने साथ दिता पिछले नितिन मुकेश दे शो ते। रेनू जी मैं थोड़ा एक बार फिर तो बहुत थैंक्स भी कर रहा, तुसी शो नू सक्सेस करने दे विच थोड़ा बहुत वड्डा एक कहिंदे हुंदे आ सपोर्ट है थोड़ी, और बड़ी जल्दी साडी टीम सारी इकट्ठी होएगी और थोड़ा सारिआं दा मैं परसनली तौर ते थैंक्स भी करांगा, क्योंकि तुहानू पता कि पिछे करके कीर्तन दरबार आ गए, फिर शो तो बाद राइट वे 15 दिनां बाद कीर्तन दरबार दे प्रोग्राम सी, ते जिन्नी मेरी टीम दे सारे मैंबर आ और सारिआं दा एक दिन डिनर होएगा और सारे नाल बैठ के गपशप होएगी, और कुछ ना कुछ आने वाले समय जो होर शो मिथे हुए है जो लीकांगे और सारी टीम के नाल इस तरह सलाह होएगी।

किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। 18 साल तो हो गए रेडियो कर दे नू। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। 18 साल इधर नजर आई नहीं हो, पता नहीं होने कितों नजर आ जाऊ।

0: वाह भाई वाह, इंतजार आज भी है। कैसे गीत हैं, कैसे गीत बन गए हैं, इधर गीत कितने दोबारा बनने हैं, कमाल हो गई है। ढिल्लों साहब होर दसो की कहना चाहोगे?
1: मैं गल कहना चाहूँगा कि भी कई बार ना चीज़ा प्रोफेसनल सलाह लैन दे नाल बहुत चीज़ों का फर्क पै जाता।
0: जी जी,
1: एक स्टेट प्लैनिंग करने की बहुत जरूरी होंगी है।
0: हाँ जी,
1: स्टेट प्लैनिंग करने की यह लोड़ पैंदी है क्योंकि आप कई बार ना अपनी प्लैनिंग हो सकता गलत होवे, अपना तरीके गलत होंगे कई बार, पर जे तुसीं स्टेट प्लैनिंग दे डिस्कस कर लैंदे आ फिर पता लग जांदा कि तुसीं किद्दां मिनीमाइज़ टैक्स नाल अपनी वध तों वध पैसे किद्दां क्रिएट कर सकदे। कई वारी की होंदा कि तुहाडे कोल मिलियन डालर आरआरएसपी च इकट्ठा हो गया, वह जो भी ट्रांसफर होना उत्ते टैक्स बहुत लगना, आलमोस्ट 50% टैक्स लगता है, 4.5 लाख डालर टैक्स लग जाना। वह दीदा तो मिलियन डालर आ पर उत्ते 4.5 लाख डालर टैक्स लगना, रहने दा 4 लाख डालर। पर तुसीं इहनूं किद्दां प्लैन करके आरएसपी नूं किद्दां मेल्ट डाउन कर सकते हैं कि टाइम दे नाल उहनूं आपां किद्दां पैसे कढ लईए आरएसपी दे विचों जो सानूं टैक्स घट तों घट लगे।
0: ठीक है,
1: इह स्ट्रैटेजीज यूज़ करनियां पैंदियां। हुंदा की है कि जदों असीं किसे वी बंदे नाल गल्लबात करदे हां, असीं 15-20 साल रिलेशनशिप रहिंदा, क्योंकि जिहड़ा क्लाइंट साडा बन जांदा असीं लाइफ लोंग जद तक असीं जीने उहनूं सर्विस दिंदे हां।
0: ठीक है,
1: मोस्टली की हुंदा कि जदों तुसीं होर किसे बैंक च एडवाइजर करदे आ उह जदों जॉब चेंज हो जांदी तुहाडा रिलेशन खतम हो जांदा। सो उस करके जदों तुहाडा रिलेशन खतम हो जांदा नाले उहनूं फिकर नहीं हुंदा कि तुहानूं पैसे ज्यादा बन, क्यों ही इज गेट पेड बाय हिज जॉब है ना बैंक। सानू यह हुंदा कि वध तों वध इन्हां दे पैसे बन, इन्हां दा बेनीफिट होए तां जो सानू ज्यादा सारियां रेफरेंस देन, नाले इन्हां नूं मैनूं उद्दां भी परसनली खुशी मिलदी है जदों आपां किसे दी हैल्प करदे।
0: डेफिनेटली, हां जी
1: हां। सो इस करके इह बड़ियां छोटियां छोटियां चीजां हुंदियां जिहड़ियां असीं सिखियां। अजीत भी जी, पहला जो 20 साल पहला जो असीं भी कोई प्रोडक्ट सैल करते होंदे सी, असीं भी गलत प्रोडक्ट सानू सही लगता होंदा सी, क्योंकि नॉलेज साडी उदां दी सीगी।
0: ठीक है,
1: हुण इसे करके भैण भाई कई वारी कई चीजा इंडस्ट्री दे विचों मिलदियां पईआं पर हो सकदा उहनां लई गलत ही होण, पर ना उहनां नूं पता ना एडवाइजर नूं पता, क्यों उहनां दे पॉइंट ऑफ व्यू दी लर्निंग जिहड़ी चीज़ आ उन्नी की आ।
0: ठीक
1: है, सो इस हो सकता लाइफ दे विच बहुत सारा बेनीफिट हो सकता सिर्फ कंसल्ट करना। मैं नहीं कहता कि भी आके मैं बिजनेस दो, सीख लो अपना बेनीफिट कर सकते, जे मेरी नॉलेज किसी का बेनीफिट कर दे ता मैनू चंगा लगता कि भी कोई मेरा बेनीफिट लै सकता हो।
0: बहुत अच्छी गल है और तजर्बा है ढिल्लों साहब का बहुत पुराना और तुसीं इन्हां दे पुराने तजर्बे का फायदा चक सकते हैं क्योंकि ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲੀਨੀਅਰਸ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਈਓ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਫਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਬਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਓ।
1: ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4662768668 69 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
0: ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ।
2: इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेरों खुशियाँ। इन खुशियों का स्वागत कीजिए इंडिया सजावट एंड पूजा हट से श्री गणेश जी के ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर दुर्बा फ्लावर्स, इको फ्रेंडली स्टैचूज जो हो जाए क्विकली डिसॉल्व इन वाटर। तो इस बार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं खुशियों की भी आराधना कीजिए। इट्स ऑल अंडर GTA's बिगेस्ट डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन, 9054 58 67

0: काउंटिंग नहीं एते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
1: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
0: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 गोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905 450 2828 905 450 2828

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बम रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca.
4: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. Tusi cheap flight tickets si pal de vichu. Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne. Ja tusi visa services di pal de vichu. Puri family vacation upar jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upar. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200. Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल दाल सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड। 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 गिलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 289-801-0566। नोबेल फ्रेश फूड।
8: विमला विलेज ला विलेज पढ़दी पीओ च जट पढ़दा, विमला विलेज ला विलेज, विमला विलेज ला विलेज पढ़दी। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: ਕਿਹੜੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ?
1: ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ।
2: ਰਾਤ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨਾਰੇ,
1: ਬਈ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ, ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਆਓ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਓ ਤੇ 100% ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਂਕਵਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬਿਗ ਔਰ ਸਮਾਲ ਵਿਦ ਲਾਈਵ ਫੂਡ ਟਰੱਕ 11 AM to 6 PM, ਆਲ ਡਰਿੰਕਸ 50% off। ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-429-4040, 647-429-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
3: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
4: एक लाइफ है जिससे लव है,
5: ये कहते मुझसे सब है,
6: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: यारों के साथ टशन या फैमिली के साथ करना हो जशन, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
3: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाप, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नाइग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंट्रल स्ट्रीट नाइग्रा फॉल्स, कॉल 9053580864
2: 9053580864 Dhaba on the Falls.

0: सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल्स।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 6473393521 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट।
2: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले लई।
3: लेनिया हो या चार बिजनेस लाई जाना होवे या फिर घूमन लाई इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस लाई कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ भी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसीसागा। कॉल 9056781200।
4: आप पंजाबी आए।

0: 32, 55, 80, 98
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
2: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्हा कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
2: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: ਹੀਟ ਵੇਵ ਆ ਗਈ।
1: ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ?
0: ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
1: ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਐਨਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੀ।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 च।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, एता गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, whole lot of value.
3: Another Don clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.